ये आकाशवाणी लेके आवाज है। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। प्रस्तुत करते हैं श्रीमती रिगजिन छोंडोल से कार्यक्रम रोशनी।

शुभ प्रभात। दुआ करो कि वो जमाना फिर लौटे जहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान की सहायता करके सुकून मिलता था। दयालुता का अर्थ है हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा होना, ये उनके प्रति विनम्र होकर उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करने, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने, उनका मनोबल बढ़ाना। दयालुता एक ऐसा कार्य है जिसका वर्णन या सीमा नहीं है। दयालुता में न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक सहयोग भी शामिल है। दयालुता केवल विशेष अवसरों पर किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। हम किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। दयालुता एक ऐसा गुण है जो इन दिनों बहुत कम पाया जाता है। इन दिनों लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि वे दूसरों की अनदेखी करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना अधिकांश के लिए प्रश्न से बाहर है। दयालुता विनम्र होने और दूसरों के प्रति विचार करने का गुण है। ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में बहुत कम लोग इस गुण से धन्य हैं और उनकी उपस्थिति उनके आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद।

हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान को इंसानों के साथ साथ दूसरे जीवों पर भी दया दिखानी चाहिए। हमें विनम्र, मित्रवत और मददगार होना चाहिए, जबकि हमें दयालुता प्रदर्शित करनी चाहिए। बदले में कुछ भी पाने के उद्देश्य से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दयालुता तो एक निस्वार्थ भाव है, एक निस्वार्थ कार्य है। अगर ईश्वर हमें दयालु बनाने के लिए पर्याप्त है, तो हमें अपने जरूरतों के लिए दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और जो कुछ भी हो सकता है उसकी मदद करना चाहिए। सुखद स्वभाव वाला व्यक्ति और दूसरों के लिए चिंता का विषय दयालु होता है। दयालुता के ऐसे कार्य बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको बस एक अच्छा दिल रखने की जरूरत है। हम में से हर एक के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। अगर लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होंगे तो दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाएगी। दूसरे लोगों के प्रति दयालु होने से हम न केवल उनकी मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि गहरे स्तर पर अच्छा भी महसूस करते हैं। इसमें संतुष्टि का एहसास होता है। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, हमें जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। हम बहुत सारा भोजन बनाते हैं और भोजन बर्बाद भी करते हैं, इसलिए हमें अपना बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंक देते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं, इस बचे हुए भोजन को फेंकने के बजाय इसे जानवरों को खिलाएं। दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होने से असीम आनंद मिलता है। दया हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और आंतरिक शांति प्रदान करती है। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। इसलिए अपने विचार बदलिए, जीवन को जीने का जरिया कुछ अच्छे मूल्य के साथ, दयालुता जैसे मूल्य के साथ कीजिए और दयालुता बढ़ाइए और खुशियाँ बढ़ाइए। धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं।

0: उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दसैँ सँगै लता मङ्गेशकर सल्कने हरियाली और ये रास्ता फिल्म मिलु सनजत कसदाई सिंह ने किशोर कुमार तं लता मङ्गेशकर निस्के सल्खने गाइड फिल्म मिलु सन्चसला पुरेन लुर सुमखने नोख शैलेन्द्र यंग लु यंग स्ट्रिक खन एस टी बर्मन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
0: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. The government has reiterated that the ethanol blending program is scientifically validated and continuously monitored. The government noted that certain misleading and unsubstantiated claims being circulated on social media regarding ethanol blended petrol are aimed at confusing and misleading the public. It said that since the introduction of E20 petrol, no widespread issues of engine failure or vehicle breakdown attributable to ethanol blending have been reported. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve. On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at five locations in Delhi in connection with a money laundering case linked to 3,000 kilogram Mundra Port drug import case. ED officials said that the searches are being conducted at premises linked to Harpreet Singh Talwar, Shamsuddin and their associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. The India Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. The United States Senate has passed a bill to pause President Donald Trump's military campaign against Iran and seek congressional approval before any further action is taken. Last night, the chamber voted 50-48 to pass the resolution, which had been approved in the House of Representatives earlier in the month. Last night's vote marked the first time a war powers resolution had successfully passed both chambers of Congress. Indian equity benchmarks traded in a narrow range this morning for a second consecutive session amid decline in crude oil prices. Sensex was trading at 76,349, up over 100 points in early deals, while Nifty was trading at 23,854, higher by 30 points in the early trade today. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments, with his goals adding another impressive accomplishment to his storied career.

0: आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, शांति समझौते के अंतर्गत ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने पर सहमति जताई। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक

नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आप क्या करेंगे? जल्दी से खोलेंगे अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद हो। fmgoldair@gmail.com। जी हाँ, बिल्कुल इसी एड्रेस पर भेजेंगे अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ शेर व शायरी या कोई ऐसी बात जो बस बात बना दे। लिख भेजिए जल्दी से। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं हमें, 9868686753 है हमारा नंबर। और जनाब, बात बस इतनी सी नहीं है, टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि आपको सुनवाने वाली हूँ आज एक बार फिर एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जो एक फेमस रॉक एंड रोल गाने का हिस्सा है और जिसे सुनकर आपको पहचानने हैं गीत के बोल। और फिर क्या करना है? बस वो बोल लिख कर भेज देने हैं, और क्या। तो सुनिए, ये रहा वो म्यूजिक पीस।

जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस गाना है ये और रॉक एंड रोल गाना है ये, मस्ती भरा जिसे सुनकर कदम रुक ही ना पाए, है ना। तो जल्दी कीजिए, देर करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। और जैसा कि आपके मैसेजेस आने शुरू भी हो गए हैं मेरे पास, उन्हें करूंगी मैं लगातार शामिल, लेकिन उससे पहले चलिए एक फरमाइश पूरी क्यों ना कर दी जाए। तो सबसे पहला गीत जो आज हम दिल का मेल बॉक्स में सुनने वाले हैं, उसकी फरमाइश आई है हमारे पास सीधा मोताला महाराष्ट्र से। जी हाँ, और विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार ने भेजी है ये फरमाइश और बहुत ही खूबसूरत गीत है। फिल्म है प्रेम गीत और सुरेश वाडेकर साहब के साथ अनुराधा जी की मीठी आवाज़।

और देखिए हम भी मिल गए हैं एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आप भेज रहे हैं लगातार मैसेजेस और ईमेल्स भी, जिन्हें मैं करूंगी अब कार्यक्रम में शामिल। तो जनाब मैसेज आया है तुलसी मस्कीन साहब का, अपना फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से लिखा है। और इनके साथ शामिल हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से भी शामिल हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है लालगिरी जी का, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से सीधा आ रहा है ये ईमेल। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल हैं, लिख रहे हैं कि कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए इस ईमेल को भेजने के लिए। और चलिए अब याद दिलाना पड़ता है आपको हर बार कि भाई मेरी नजरें ढूंढती हैं उन मैसेजेस को, उन ईमेल्स को, जिनमें होती है कुछ शेरो शायरी या कुछ खास बात, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में या नाम शामिल करवा लेने में वो बात कहाँ, जो अपना लिखा हुआ कुछ बढ़िया सा अगर पढ़ा जाए तो मुझे भी पढ़ने में मजा आए और आपको भी सुनने में खुशी हो, है ना। तो जल्दी कीजिए, वक्त अभी है हमारे पास, कुछ ढूंढिए अच्छा सा और लिख भेजिए। और फरमाइशी गीत और आज के सवाल का जवाब तो आप लिखकर भेज ही रहे हैं। चलिए इसी बात पे एक बार फिर आपको वो धुन सुना देती हूँ जिसे आपको सुनना है और पहचानना है कि वो किस गीत का हिस्सा है।

तो एनर्जी आ गई है इस खूबसूरत से म्यूजिक पीस को, इस एनर्जी से भरे म्यूजिक को सुनने के बाद। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से लिख भेजिए कि कौन सा है ये गाना, और जो कुछ भी जानते हैं आप इस गाने के बारे में लिख डालिए। तो चलिए इसी बात पर अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। लिखा है कि धड़कनों की बातों को महसूस करना, उन बातों को समझ कर जवाब देना। कहने के लिए तो ये सामान्य बात होती है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए न जाने कितने महीने लग जाते हैं, न जाने कितने साल गुजर जाते हैं। शायद इन्हीं हालात के बीच में रहने वाले शख्स जो भी होते हैं, हम कह सकते हैं कि मोहब्बत इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं। प्यार की मौजूदगी ही जीवन को विचलित कर देती है, और प्यार की खुशबू ही प्यार की पहचान कराती है। बात तो बड़ी गहरी लिखी है जनाब, और गाना भी बड़ा गहरा और बड़ा ही खूबसूरत चुना है इन्होंने। जिसकी फरमाइश लिखकर भेजी है उसे हम करेंगे पूरा, लेकिन कहां से आई है फरमाइश, किसने भेजा है मैसेज, ये तो सुन लीजिए। शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश और उनके मम्मी पापा भी इस मैसेज में शामिल है। क्या बात है जी, लगता है कि पूरा मतलब जो कॉलोनी है आपकी वो शायद इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है, और सबने अपना अपना नाम इसमें लिखकर भेजा है। और वाकई ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और एक कमाल की बात बताऊं, सेम सॉन्ग की फरमाइश हमें एक और लिसनर से भी आई है। कौन है वो, सुनिए। बोध राज खोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, उत्तम नगर दिल्ली से आई है फरमाइश। आप दोनों की फरमाइश एक है, तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत है आपका एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स खुला हुआ है, प्रोग्राम जारी है और आपके साथ मैं हूँ नाज। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे की थी रिक्वेस्ट, आपने भेजनी शुरू कर दी हैं बड़ी ही खूबसूरत सी शायरियां भाई, जिन्हें शामिल तो करना ही पड़ेगा। तो लिखा है कि माइक संभालो तो महफिल जगमगाए, नाज की आवाज दिलों को छू जाए, शब्दों में मिठास, लहजे में नजाकत, आरजे ही नहीं तुम हो मोहब्बत। नाज यूं ही चमकती रहो, तुम्हारी आवाज यूं ही दिलों तक पहुंचती रहे। क्या बात है अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनु बड़जात्या जी का है ये मैसेज, सीधा मुंबई से आया है। शमशुल खान और अनुराज बेनारा इनके साथ इस मैसेज में शामिल है। और अगला मैसेज आया है चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, फिर दुकान बदलता है, और कभी कभी देश भी बदल देता है, और कभी कभी भेष भी बदल देता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आपने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। क्या बात है। सतीश अनेजा जी का ये ईमेल आया सीधा चंडीगढ़ से बिमला अनेजा जी के साथ। आपका भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज बहुत ही प्यारा है। जीवन टेस्ट है, खुशियां रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में कौन है, गेस्ट हैं। इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही हमारे लिए बेस्ट है। क्या बात है। और ये आपका जो मैसेज है ना सर, ये भी बेस्टम बेस्ट है। उत्तम नगर दिल्ली से आया ये मैसेज बोध राज घोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। और अगला मैसेज शामिल करेंगे हम, जिसकी जैसी सोच वैसी तो कहानी रखता है, वैसी वो कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, हादसा उसका क्या बिगाड़ लेगा, जो घर से निकलते वक्त मां की दी हुई निशानी रखता है, जो औरों के लिए जीता है ईश्वर उस पे मेहरबानी रखता है, हमारा देश महफूज है, महफूज ही रहेगा, इसकी सरहद की खुदा निगहबानी करता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इसमें शामिल है। और चलिए, घड़ी पर डाल ली है मैंने नजर, 10:51 और 10 सेकंड भी हो चुके हैं जनाब, तो हमारे पास अभी है थोड़ा सा वक्त, तो कुछ और मैसेजेस हम शामिल कर लेते हैं। मेल का रुख कर लिया है मैंने। कृष्ण कुमार गुप्ता जी का ईमेल खोल लिया है। लिखते हैं कि विश्वास का पक्षी प्रभात होने से पूर्व ही प्रकाश का अनुभव करने लगता है और खुशी से गाने लगता है। बिल्कुल सही बात है। और आज के सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है भाई, सही है या गलत थोड़े से इंतजार के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अगले मैसेज को ढूंढ रही हूं मैं, जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात, मिल गया है मुझे। दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती प्यार से हो तो इश्क बन जाती है, दोस्ती गैरों से हो तो पहचान बन जाती है, दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भेजा है ये मैसेज और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज, होस्ट नाज जी हम भी सुन रहे हैं, प्लीज एनी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए। ये मैसेज आया है रचिता मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, तुलसी मस्कीन जी की ओर से, आशीष राजा भी इसमें शामिल है, चंडीगढ़ से ही है ये मैसेज। चलिए, और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से भी आया है मैसेज हमारे पास। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू भी इस मैसेज में शामिल है।
लेकिन शिकायत है मेरी आपसे कि ना आपने आज के सवाल का जवाब लिखा, ना कोई शेर व शायरी लिखी, ये क्या बात हुई भाई? कोई बात नहीं, अगली बार आप जरूर लिखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खूबसूरत बहुत जिसका अंदाज है, आई हुई शो में गुल नाज है, जिसके आने से महक उठती है दिल की महफिल, धुन ये संगीत की क्या बजी आज है। ये तो यही तो आपको पहचानना है, पहचान लिया तो लिखकर क्यों नहीं भेजा। शमशुल कमर राही साहब, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान का ये मैसेज है। कहाँ से है? गंज डुंडवारा से है भाई। तो देर नहीं हुई है, अभी भी लिखकर भेज दीजिए जल्दी से गाने के बोल, ठीक है। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ किसका, मास्टर अशोक वर्मा जी का कर लेते हैं। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आया है ये मैसेज। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना इसमें शामिल है। सुदामा नगर खंडवा से भी इसमें लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप शामिल हैं। और फरमाइश लिखकर भेजी है अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, अच्छा अगला मैसेज मैं शामिल करूँ उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेल करते हैं या मैसेज करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक ही बार करें, या अगर दोबारा करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर करें। लगातार मैसेज करने से क्या होता है ना कि जो बेचारे लिसनर्स ईमानदारी से सिंगल मैसेज करते हैं उनके मैसेजेस खो जाते हैं और बार बार बार बार रिपीट एक ही मैसेज स्क्रीन पर नजर आता है, तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है ना। तो प्लीज प्लीज प्लीज भरोसा रखिए हम पर, हम करेंगे आपके मैसेज शामिल और आपकी फरमाइश भी पूरी। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है और एक ही मैसेज करने की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि अगली बार आप ख्याल रखेंगे इस बात का। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं आज के उस गीत की जिसकी धुन, शुरुआती धुन मैंने आपको सुनाई, क्योंकि वक्त अब बहुत तेजी से बीत रहा है। तो जनाब, साल था वो 1965 जब एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्म रिलीज हुई थी और जिसका नाम था

गुमनाम, उसी फिल्म से है ये आइकॉनिक गाना जिसे आवाज दी रफी साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन की जोड़ी ने और गीत के शानदार बोल लिखे शैलेंद्र जी ने। एक डिस्को क्लब में ये गाना फिल्माया गया है जिस पर उस समय की मशहूर डांसर लक्ष्मी छाया जी को आप कोरियोग्राफर हरमन बेंजामिन के सिखाए स्टेप्स करते हुए देखते हैं। और एक खास बात बताऊं आपको कि साल 2001 में यानी पूरे 36 साल बाद ये गाना हॉलीवुड मूवी घोस्ट वर्ल्ड, जी हां घोस्ट वर्ल्ड के शुरुआती क्रेडिट्स में कई सीन्स में ये गाना सुनाई दिया था। और चलिए हम भी सुनेंगे मस्ती भरा सॉन्ग, उससे पहले जल्दी से उन लिसनर्स के नाम शामिल कर लेते हैं जिन्होंने इस धुन को जल्दी से पहचाना और गीत के बोल भी लिखकर भेज दिए। प्रकाश गोगिया दिल्ली से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर से, सतप्रकाश गोयल, मधु किरण, राजू मिंगलानी, फारूक अली खान, फैजी फराज, गुन्नौर यूपी से, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से आया जवाब, और मैं जानती हूँ इसके अलावा भी कई सारे जवाब आए हैं जो कहीं खो गए हैं, क्योंकि इतने सारे ईमेल्स और इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि उनमें से ढूंढना टटोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

0: जीना आसान हो।
1: देखिए जाना कहीं नहीं है क्योंकि इस गाने के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद फिर होगी हमारी मुलाकात। एक बेहद खूबसूरत जगह की तस्वीर लेकर रहूंगी हाजिर।
0: बोलो या ना बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो या ना बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है।

0: बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level

नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11:30। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। आज आप मेरे साथ एक बार फिर चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, और करने वाले हैं सिक्किम राज्य के एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर। बर्फ से ढकी पहाड़ों की ऊंची चोटियां यहां से आपको नजर आएंगी, और आप करेंगे भारत की पहली ग्लास स्काई वॉक मेरे यानी नाज के साथ। तिब्बती भाषा में पदलिंग और ऐतिहासिक रूप से पेमांग गत्से मठ के लिए मशहूर इस जगह को आम बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है, ये मैं नहीं हर बार की तरह आप ही मुझे बताएंगे कहां और कैसे। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला रही हूं कि एफएम गोल्ड एआईआर दिल्ली @gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे 9868868753 पर, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

भाई दो लोगों ने पूरी और बेहतरीन कोशिश की है आज की डेस्टिनेशन को पहचानने की, लेकिन थोड़े से अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपका जवाब सही नहीं है। सुदर्शन मुखी जी शांतिनगर सोनीपत से और अनु बड़जात्या जी मुंबई से, आपने कोशिश बहुत अच्छी की लेकिन थोड़े से दूर रह गए आप। सिक्किम राज्य के बेहद खूबसूरत और मशहूर हिल स्टेशन पेलिंग की आज सैर करेंगे, जो कि समुद्र तल से 2150 मीटर यानी लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। खासियतें कई सारी हैं जिन पर सिलसिलेवार बातें करते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि यहाँ यानी पेलिंग तक पहुंचेंगे कैसे। तो भाई फ्लाइट लेंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी पेलिंग से दूरी 126 किलोमीटर के आसपास है। आराम से टैक्सी या कैब के जरिए आप ये सफर तय कर सकते हैं। बाय ट्रेन आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी में मौजूद है, और पेलिंग से यहाँ की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। पूरी तरह बाय रोड ही जाना है तो जनाब बागडोगरा पहुंचिए और फिर वहीं से बुक कर लीजिए। प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग कैब का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आपको पेलिंग का प्लान बनाना।

देखिए, वैसे तो साल भर ही पेलिंग का मौसम सुहाना ही रहता है, लेकिन खासकर मार्च से जून के बीच अगर आप यहाँ आते हैं तो आसमान साफ होने की वजह से आप कंचनजंगा पर्वत की चोटियाँ साफ देख पाएंगे। छोटा सा खूबसूरत और शांत शहर है ये, तो छुट्टियाँ बिताने के लिए परफेक्ट प्लेस के रूप में ये खुद को साबित करता है। फोटोग्राफी या फिर रील्स बनाने के अगर हैं आप शौकीन, तो भाई अप्रैल से मई का टाइम स्लॉट आपको चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय आप घाटी को लाल और गुलाबी फूलों से ढका हुआ पाएंगे। स्नोफॉल एंजॉय करना है तो आइए दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के बीच, और अपने साथ भरपूर मात्रा में गर्म कपड़े रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉनसून के दौरान पेलिंग जाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान सिलीगुड़ी से पेलिंग के पहाड़ी रास्ते थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। बाकी मौसम में जब आएंगे तो क्या कुछ एंजॉय करेंगे यहाँ यानी पेलिंग में, जानेंगे लेकिन इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम में राजधानी गैंगटॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है पेलिंग, जहां की सैर पर हम निकले हैं और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। और पेलिंग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना चाहिए यहां मौजूद पेमाइंग गत्से मठ, जो कि साल 1705 से यहां शान से खड़ा है। सिक्किम के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में इसकी गिनती होती है और ये मठ बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस मठ का खूबसूरत आर्किटेक्चर आपकी आंखों को खूब भाएगा और यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको उस शांति का अनुभव कराएगा यकीनन जिसकी तलाश आपको जरूर होगी। इसके बाद सांगा चोइलिंग मठ भी आपको जरूर जाना चाहिए, जिसका निर्माण हुआ था साल 1642 में और जो कि घने जंगलों के ऊपर बादलों के बीच मौजूद है। प्रार्थना के झंडों की फड़फड़ाहट और कभी कभी मठ के अंदर से सुनाई देने वाला मंत्रों का उच्चारण आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, जिसे आप कभी भुला तो नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है।

देखिए, भुला तो आप एक और चीज नहीं पाएंगे और जिसे आप एक्सपीरियंस करेंगे यहीं पेलिंग में, सांगा चोइलिंग मठ के ठीक बगल में। बेसिकली ये 137 फुट ऊंची एक स्मारक है जिसकी बारीकियों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके ठीक नीचे खड़े होंगे। और इसके लिए करनी होगी आपको ग्लास स्काई वॉक। एक्चुअली ये एक पुल है जिसकी जमीन कांच से बनी है और जमीन के काफी ऊपर होने की वजह से ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद आप निकल जाइए राब डेंटसे की ओर, जो कि साल 1670 से 1814 तक सिक्किम की दूसरी राजधानी रहा, और अब यहाँ के खंडहर तब के इतिहास की झलक आपको दिखाते हैं। ताशी दिंग मठ भी एक बेहतरीन चॉइस है। राथोंग चू और रंगीत नहीं के बीच मौजूद ये मठ सिक्किम के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है और जिसके कोने में, हर कोने में आपको शांति और एकांत का अनुभव होता है, ठीक वैसे जैसे इस अगले गाने को सुनने के बाद महसूस होता है।

ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारों, आध्यात्मिक मठों के साथ साथ हरे भरे माहौल के बीच खूबसूरत झरनों की भी यहाँ यानी पेलिंग में कोई कमी नहीं है। हिमालय की पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों में कंचनजंगा वाटरफॉल सबसे पहले आता है जहां आपको जाना चाहिए। यहां गिरते पानी की टिमटिमाती आवाज आपके कानों को किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देगी। चाय और मैगी के स्टॉल्स इस जगह को और भी खास बना देते हैं और इसके साथ ही रामबी वाटरफॉल भी है जो खेचो पालरी और युक्सम जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक घंटा अगर आपने यहाँ बिता लिया ना तो बस वही आपकी सारी उलझनों को दूर करने के लिए काफी है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां खूबसूरत पेलिंग की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं खींचे ओपालरी झील के किनारे, जहां हरे भरे पेड़ों की छांव में आप अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताना जरूर पसंद करेंगे। बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये झील भगवान शिव का पद चिन्ह है, जबकि बौद्ध धर्म के लिए ये देवी तारा का पद चिन्ह है। और यही वजह है कि इस झील में मछलियों को पकड़ना पूरी तरह से मना है। और शायद यही वजह है कि ये झील मछलियों की बड़ी तादाद का घर भी है। एक पगडंडी से होकर आप यहाँ पहुँचते हैं और फिर बस

एशिया के दूसरे सबसे लंबे पुल पर अगर आप चलना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल सही जगह हैं आप। पेलिंग, जिसकी तस्वीर के हर रंग की तरह ये रंग भी बहुत खास है। सिंगशा ब्रिज इसका नाम है, काफी लंबा है और दो हरे भरे पहाड़ों को आपस में जोड़ने का काम ये सिंगशोर ब्रिज करता है। ब्रिज के नीचे गहरी घाटी फैली हुई है और जिसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई पड़ते हैं। गाड़ियों की आवाजाही की इस पुल पर मनाही है, तो आप आराम से पैदल चलते हुए न सिर्फ खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले सकते हैं बल्कि फोटोज क्लिक करके अपनी तस्वीर में पेलिंग की इस खूबसूरती को कैद भी कर सकते हैं।

अब चलते चलते बात पेलिंग के स्वाद की भी, तो जनाब नेपाली और तिब्बतियन स्वाद का जबरदस्त और टेस्टी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पेलिंग में चखेंगे। पहाड़ी इलाका है तो सब कुछ लगभग आपको गर्मा गर्म ही परोसा जाएगा, जिसमें मोमोज आप चाहे जहाँ जाएं मिल ही जाएंगे। इनके अलावा थुक्पा, जो तिब्बतियन बेस्ड एक गाढ़ा नूडल सूप है, ढेर सारी सब्जियों या फिर मीट के साथ इसे बनाया जाता है। इसके साथ ही शाफले, जो कि एक तिब्बतियन ब्रेड या एक तरह की स्टफ्ड कचौड़ी भी आप इसे कह सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगी, और जिसके अंदर भी आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह की फिलिंग टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगी। गुंडूक सूप भी आप यहाँ के मेन्यू में पाएंगे, जो कि एक ऑथेंटिक सिक्किमी आइटम है और जो राई के साथ मूली के पत्तों को सुखाकर और फिर फर्मेंट करके बनाया जाता है। चावल के आटे से बनी डोनट के शेप में बनी सेल रोटी आपको परोसी जाएगी, जिसके साथ आप टेस्ट कीजिएगा यहाँ की स्पेशल छुरपी चटनी भी। अभी लुत्फ उठाइएगा तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज के इस लास्ट सॉन्ग का। मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

फिल्म लुई डिग्री में नंगा का सता लता मंगेशकर ने चुपके चुपके फिल्म में लु सनाजत लूर सुमकन आनंद बख्शी यंग लुयंग श्रीकन एस डी बर्मन

दाखसंगी जरंगे हम किसी से कम नहीं फिल्म में लो आशा भोसले तंग मोहम्मद रफ़ी ने सनाजज लूर सुमकन इन पिन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग श्रीकन राहुल देव बर्मन फिल्म मेलुई डिग्री मिनंगा का सता फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म मेलू मोहम्मद रफ़ी ने सनाजत लूर सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग श्रीकन ओपी नैयर

फिल्म मिलवी डिग्री में नंगा का सता दिल देखे देखो फिल्म मिलो मोहम्मद रफी ने सनाजत लूर चुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग सिकन उषा खन्ना।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ के रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं

0: हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे।

0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे।
0: भाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी।
1: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
2: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों

0: में कोई विरोध नहीं है, बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: दक्षिणी जरंगे एनसीईआरटी चिंदक जत का ने डिग्रीम उमंगे खाक अस्तोंचिक सुम्ज्ञान चुक सुम्पा सनाजत मजे आकाशवाणी लेने जुएं जिकतांगें अंगीमे चुचो चिक छदुक कसता आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तंग अंग्रेजी नंगना सुल सनाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब

0: सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। चार महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9
0: स्टेशन है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian national

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए बॉर्डर फिल्म से गीत सोनू निगम और रूप कुमार की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मलिक।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में कच्चे धागे फिल्म से गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार नुसरत फ़तेह अली खान। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सौदागर फिल्म से गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में सनम बेवफा फिल्म से। गीतकार सावन कुमार और संगीतकार महेश किशोर।

कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सनम बेवफा फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे। गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार महेश किशोर। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं फैसल खान। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और ये भी कहा कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नज़र आसाम में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है और फीफा आलमी कप में आज मैक्सिको में कोलंबिया ने डीआर कोंगो को 1-0 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर यह कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे एक इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तखार अहमद की रायजनी करके जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तनकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के देरीना मौकफ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामे बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। तेहरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमू सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनज़र सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो सोच समझकर और एहतियात के साथ ईरान का सफर करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफारतखाने ने यह भी कहा कि वो जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं, जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया कि वो लगातार सफारतखाने की बाजाबता वेबसाइट देखते रहें। सफारतखाने ने मदद के लिए हंगामी नंबर भी जारी किए हैं, +9891281091115, +9891281091109, +9891281102, +9899321793959। भारतीय बाशिंदे सफारतखाने से ईमेल के जरिए भी cons.tehran.mea.gov.in से राब्ता कायम कर सकते हैं। नीति आयोग के नायब सरबराह डॉ अशोक कुमार लाहिरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉ लाहिरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 खरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रोकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: नामरीगढ़ से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकारी मुलाजमीन और तमाम पेशावर अफराद की रोजमर्रा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा, इसमें शिवाजी स्टेडियम भी शामिल होगा और जनकपुरी वेस्ट से इंद्रलोक तक मुसाफिर बिला रुकावट सफर कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय सनतों के वजीर HD कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज करना मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नई दिल्ली में स्टील के शोबे की डिजिटलाइजेशन पर चिंतन शिविर से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मुतहरिक स्टील शोबे की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने 2018 के बाद से स्टील की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे मुल्क की अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली बरस 2021-22 से खाम स्टील की पैदावार तकरीबन सालाना 8% बढ़ी है जबकि तैयारशुदा स्टील की खपत में अंदाजन 13% का इजाफा हुआ है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था, उसी मुनासबत से ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफर में आसानी पैदा हुई है। आलमी मौकों तक रसाई में तौसी हुई है और शहरियों को बाख्तियार बनाया गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज कोंकण और गोवा में तेज से बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हफ्ते के दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा शुरू किया। इस दौरे का मकसद अमरीका के ईरान के साथ तय पाने वाले समझौते के बाद अपने अरब साथी मुल्कों को फिर से एतमाद में लेना है। अमरीका, इसराइल और तेहरान के दरमियान 4 महीने से जारी लड़ाई के बाद अमरीका ने ईरान के साथ समझौता किया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। यह दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम वाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी जो आइंदा बैन अल-अक़वामी की तैयारी का एक हिस्सा होगा जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। टीम की कप्तान खैदम शिलेमा चानू करेंगी जबकि निधि और एंजली हर्षा रानी मिन्स 2 गोलकीपर होंगी। नवरोज के इस दौरे का आगाज स्कॉटलैंड की सीनियर खवातीन की टीम के साथ 2 मुकाबलों से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मेक्सिको के ग्वाडा लाजारा में ग्रुप के मैच में DR कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय अकवा मुत्यादा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और ये भी कहा कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बर्तानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian Embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals to continue to avoid all non-essential travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualifies for round of 32 after beating DR Congo 1-0 in Mexico today. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
3: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
2: The Indian envoy also spoke about the ongoing review of the UN mandates under the UN 80 framework, which aims to improve efficiency across the organization. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In light of recent positive developments and the improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about traveling to Iran. According to the advisory, Indian nationals advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +989128109115, +989128109109, +989128109102, and +989932179359. Internationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Choi Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever.
4: It is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction. In coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
2: In a social media post, the External Affairs Minister said that they reviewed cooperation across political, shipbuilding, trade, investments, defense, technology, clean energy, culture, and person-to-person domains between the nations, as well as opportunities and startups, fintech, and multilateral fora. to also exchange views on development between the two nations, respective regions and around the world. Today is Passport Seva Divas. The day aims to commemorate the enactment of the Passports Act on 24 June 1967. On the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the rollout of Passport Seva Programme 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and post office Passport Seva Kendras and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. BJP today hit out at Congress President Mallikarjun Kharge for being involved in an alleged land scam in Karnataka related to allocation of land to a trust run by his family. Briefing media at party headquarters in New Delhi, BJP spokesperson Pradeep Bhandari said that in 2024, around 5 acres of industrial land were allotted to the trust by the Karnataka Industrial Area Development Board for Research and Development in the aerospace and defense sectors. Mr. Bhandari questioned the allotment, alleging that the trust had no prior experience in these fields and that the land estimated to be worth around 100 crore rupees was granted despite this. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today inaugurated the commencement of construction work at the Central Secretariat Metro Station for the Central Vista Corridor in the national capital. Speaking to the media, the minister described the moment as historic and highlighted that the project will significantly streamline daily transit for government employees and all professionals, promising smoother and more efficient commuting across Delhi. He added that once completed, it will enable seamless commuting services from Janakpuri West to Indralok, creating a full loop.
5: This is a truly historic moment. In the national capital, from where the entire government operates, including Central Vista, a groundbreaking ceremony has been conducted today to provide a major facility for government employees and all those working in the various offices located here. Once this project is completed, it will connect several parts of Delhi and integrate them with different metro lines across the city. This metro corridor will run from RK Ashram Marg to Indraprastha, and it has 9 stations.
2: The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at 5 locations in Delhi in connection with the money laundering case linked to 3,000 kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at premises linked to Harpreet Singh Talwar and Samshuddin and the associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra to the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Ladakh till Saturday. As a result of heavy rainfall in lower Subansiri district in Arunachal Pradesh, downstream flooding in various bordering districts of Assam has become a concern. According to meteorological reports, the Yazali area in lower Subansiri district of Arunachal Pradesh recorded 72.8 millimeters of rainfall in the last 24 hours, causing a sharp rise in river discharge and flash floods in the upper catchment areas. We have more from a correspondent.
6: The Assam government has placed all its agencies on high alert after heavy rainfall in Arunachal Pradesh triggered concerns of downstream flooding in Assam. As a result, a substantial rise in water levels and flow velocity is expected in downstream districts of the state, including Dhemaji, Lakhimpur, Vishwanath and Sonitpur, with the flood waves likely to move further downstream over the next 1 or 2 days. NDRF, SDRF and other emergency response teams have been kept on standby, while district administrations have been directed to closely monitor vulnerable areas and take necessary precautionary measures. People living in low-lying and flood-prone areas have been advised to remain vigilant, follow official advisories, avoid inundated areas and refrain from traveling by small boats. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
2: The Hemis Festival 2026 commences today with great enthusiasm and devotion at the historic Hemis Monastery in Leh district of the Union Territory of Ladakh. The two-day festival attracts thousands of devotees, tourists, cultural enthusiasts and Buddhist scholars from across India and abroad. The celebrations commenced with traditional religious rituals, prayers and the sacred cham mask dances performed by monks of Hemis Monastery. Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh today paid tributes to Rani Durgavati on a martyrdom day. In a social media post, the minister described Rani Durgavati as a valiant queen and symbol of feminine power who sacrificed her life in a heroic struggle against Mughal invaders to protect sovereignty and cultural heritage. Mr. Shah added Rani Durgavati remains an eternal inspiration for good governance and service. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamieson Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun a three-day tour of the Gulf region aimed at reassuring key Arab allies following Washington's newly negotiated agreement with Iran after the conclusion of the four-month U.S.-Israeli conflict with Tehran. Speaking ahead of the trip, Rubio said the purpose of his visit was to ensure that the views of Gulf nations are taken into account in ongoing U.S. negotiations with Iran. In West Bengal, at least 5 persons are feared dead and some others are trapped after a roof of an under-construction go-down collapsed near Taratola in Kolkata. Some injured persons have been rescued. Rescue operations are underway. Personnel from the fire and emergency services and the police have reached the spot. Hockey India has announced the 24-member junior women's squad for the exposure tour of the United Kingdom, scheduled from July 5th to 14th. Under his new coach, Team White, the team will play 7 matches across Scotland and England as part of his preparations for the upcoming international competitions, including the Junior Asia Cup. The young squad will be led by Captain Kedem

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128109115। दूसरा नंबर है +9

0: 9891281009 तीसरा नंबर प्लस 9891281009102 और चौथा नंबर है प्लस 9899321793 इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको

0: कैसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रोकिंग सेरेमनी आज ये की गई है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणामस्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1-2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग-अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Medium wave kilohertz and chikstong apchung aksum yang na meters ngib gya gyachuk yabji tang chuzurgu. Yang FM megahertz gyanang chiktang chuzurchik ikang aji akash vani line juin chiktang in. Nime chuzot nistang pechadu kasata nistang skarmang apchung anga tsukpa lurik sanazadin inang asmola padma chondrole salkanilu sanazad.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: dakhsangi jarangi smalla tunrup tang phunchok wangtai salkani lurik asana jas ngaje akashwani le ne jwin jik tang in ngi me chu cho ngi stangs karma ngap chunga nga chadu kasata la dakhsna nga nasul sana ja
1: ibo akashwani len ka satangi jana rinchinangmoni na sul sanazat ngagares galchi thundele chos penanga pakistani kashmir tonsa phingches pekash kunjo choza tok pakistani united nation choksika shi despera tangches pekash ngat kalkala zaden jik thopayu le chullash kyo de yoden jik thundele spera matanga pakistani konas pomius pe chulla kolte inok molto
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ग्याल्ची थुंडेले चोक्सपे नांगा ग्यागारे थुस्मी पी हरीशेस श्रीवेस कुंडो ने चुल्ला पाकिस्ताने जो चा सलकान बेका श्क्यों जो चा सा तोक पाकिस्ताने थुस्मी आसिफ इफ्तिकार एमादे सलकाने जो चा लान सालाजा देंजिक पी हरीशेस जम्मू खचू लेका ग्यागारे तुस युंडिंग्स ने फाला डुलेन योत खनबो दाप्स्ते इनोक मोलेंजिक जम्मू खचुल बो ग्यागारे खाकचिक इनोक मोलतो ইরান তেরানে নাঙা গ্যাগারে থুসমি সুংস্কোবে নাসলুক জোকস দে ছাকান বাজিক্স দে গ্যাগারে থুসমি গুনলা লাপস্তো নেকা স্পেলতে ইনোক
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।
1: लादा गुजुंग नजदे शिक्षण जुनबा विनय कुमार सक्सेने चुकलम सर तंस्तकने का में तो गश के छल छिन मोरे रे सर जंग जाचिस ला मंग दो बुरा जाते नो चुकलम सर का जाचिस चने ई शिके छल बो ग्यागारे छंगमे संग शिके छल chenmo gune thone chik gyurches inok yang ibo gyute yuljong se mimangs gun la chepi de yongge skaps mang a thopche se skor thopches tang skoryang spa tang na se mimangs gune fia semyang se nasa demojik gang gyurche se rewa inok te na chos la stakne na nga school of agriculture science and technology stona se ka sakyat square meter bum chik lakza me ka chandik stang zo thap se rok se ka metogesh ke chal sarjangs zaches inok yang I metok kun ग्यागारे टोंखेर छेनमो गुने नांगा सोंगस्पेल जाचेस तंग लोपथुक कुनला युनतन लोपजोंग जाचेस फिया फानतोक छेनमो लेपचेसे रेवा इनोक इ चार्जी गुन थांगसपो तंग यामपो लासिरि नांगा ख्योंचे सेफिया लादाक उजुंग आजदे सोदनाम लासखुंग तंग हिमाचल प्रदेश ए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी निस्के पारला छादोनि इच्छा जिगे का छक्सताक जाते इनोक kasata khyaptak shik sanaza durdashin kendra le nasule zdekha refia rzong changman ne le kargil nubra changthang shamdras nangzangskar gune stranger e fia shnyan ju nenches ino reltos pa gun tv nasul kawari shinanga thungum shan videography cinematography salchen nasul khyongches tang tangche se thoga thongom chan rang elaga hd video camera 4g 5g connectivity chane smartphone tang rang elaga motor khollo yotkhan gulna nanga shkyate salches in europe inabotangyam po akashwani lene nasul ton

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: फिल्म डिक्टिम बिना का सत्ता अश्नबी फिल्म किशोर कुमार ने सनत जदिन आनंद बख्शी लो यंग स्टिकन आटी बर्मन

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

फिल्म लिटरेचर में स्तिंजुक पेक का मौसम, फिल्म लू लता मंगेशकर तम भूपेंद्र ने सनाजादेन, लुट सुमकन गुलजार, यांग लियांग जिकन मदन मोहन।

0: ngashe akashwani lene chuin chik tain pito chu chu tuk cha du kasa ta akashwani deli ni hindi ta angrezi na nasul sanajat
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Tarazola in Kolkata today. Three people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Shubhendu Adhikari reached the spot. State Ministers Agnimitra Paul and Dr. Indraneel Kaur also reached the accident site to assess the situation. Teams of the National Disaster Response Force, Police, Fire and Emergency Services and the Indian Army are engaged in search and rescue operations. Several workers are feared to be trapped beneath the debris. The State Secretariat, Nabonno, has issued helpline numbers to assist those affected by the mishap. The helpline numbers are 1070-869-798-1070, 033-2214-3526 and 033-2253-5185. India has strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform and also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behoves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
4: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
3: The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In the light of recent positive developments and improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about travelling to Iran. More from our correspondent.
5: Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy also urged them to closely follow local developments through credible sources and comply with instructions issued by local authorities. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
3: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. The central government has approved over 211 crore rupees towards the construction of 96 roadworks in Tripura under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Batch 1 for the financial year 2026-27. This covers a length of more than 160 kilometers of roads in the state. Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open badminton tournament. And with that, we end this news bulletin.
0: Nashe Akashwani Lene Shunjiktain, Pitochuzo Tuktans Karmash Chuchadu Kasata Gamilpes Kadlon Degrim Sanadzad Degrim Pulkan Konchotashi and Degrim Ekotik Dadkan Sunamanchok.

Dasang isyara yang gamil pes katlon dikrim sanazats. Dikrim pulkan inpen konchok tashi ham dikrim ekotik zat kan inpen sunamal chok. Medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz. Short wave 60 meter band aur FM 101.1 megahertz par hum akashvani le se bol rahe hain. पेश है फौजबायों के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद। फौजीबाई सुनेंगे अपने इस वक्त के कार्यक्रम में फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से सुनते हैं, अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक।

अगला गीत लीजिए, सुनिए एक रिश्ता फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे खाकी फिल्म से गीत अर्नब चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए सुनिए पुकार फिल्म से, आवाज़ें हैं शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। गीतकार है मशहूर सुल्तानपुरी और संगीतकार है ए आर रहमान।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए धड़कन फिल्म से गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

0: kongwe chushut yogmekang solid waste resource management nase zikstoks elena jate nok vidyarthi vigyan manthan vvm nistong nishu charuk sabthuni brochure dang lopte yontan skori tongshi banu parbe lenanga puchagune jinda chungispe lopta khananga jatkojik daldik jate yotus pela jate no ichospe na padmashri jengstaks namskhantang tongshi chenme kose kane zul la janskan si phunsuk physician specialist doctor tsiring norbo engineer ta innovator skojab tsiring norpel tang laskar sosena charla zat khan gun thusa jateno stojungi khampa tang tongkher yerge se phandes kore lonpo manohar lale Gyaltsa New Delhi nanga Central Vista Corridor de Central Secretariat Metro Station eka sarjang se las kozuk chache si kozuk stendel jatenok etos lonpe e charji bo dubches ne gyaltse nanga mimang smangpo jiga phantok chache se nok molenchik izuk mola jats
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर
0: No stations. Kasata kept a shik sanazat, do the shingander lay nasuls de carapia, zong tangma, lay gargil nobra, jangtang sham, dras, tang zanskar gune, stinger affair, nyanju, lenses and oxestos bagun, divin nasul, gavrechina, tongomshan, videography, cinematography, nangar saljan, nasul conches, tang tangches, toga, tongomshan, rangelaga, HD 4K video camera, 4G, 5G connectivity, jane, smartphone, tang. Rangai laga motor kholo yotkhan gunla nangaskerte salchesenok restos baguni nyanchukun rangran jongne skangosteno nyanchu pulchese stingjuge chestans july ches churuk borteno jipsel dudashin kendeli nasulis dekhne turgus jat akashwani legute ladasena sul ngimin halanji nga to chuchur gu ngimi chuchot ngis tang skarma ngap chunga pito chuchosh nga tang pito chuchol dun tang skarma chunga gunika sanchis la pulinjik tang yot yang san khan langes la ina sul gun shichu star ke platform soso YouTube ka AIR News le Facebook page ka AIR News le X handle ka AIR News le @ Prasar Bharati वेबसाइट का www.newsonair.gov.in तंग लुंगटिन खाएं डिक्रिम छंगमा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप का शकंदा संचेसला पुलिंजिक तंग योद आकाशवाणी लेने नसुल्थन कसता दिलचस्प सनजात

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मैं आकाशवाणी लेने चुनचिकताइन फितो छुतो दुंदांग स्कर्मा जिपचु छदुक कासाता तोसो चपेस ने आकाशवाणी श्रीनगर ने उर्दिना न सुल्तान तपसरा सनाजात।

0: इंतजामिया ने जुलूस के एहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए थे। इस दौरान 10 मुहर्रम को मनाए जाने वाले योम आशूरा के सिलसिले में भी तैयारियों और इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम का आईनी, जमहूरी और जायज हक है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा मजीद किसी ताखीर के बगैर बहाल किया जाना चाहिए। चौधरी रमजान ने आवाम को अपोजिशन के मनफी प्रोपगंडा से बाखबर रहने की सलाह दी। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में सिलसिलावार मीटिंगें मुनक्कद हुई, जिनके दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्मृति पखवाड़ा और डिजिटल तरबती प्रोग्राम के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। अनंतनाग जिले के मटन इलाके में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस की मुनासिबत से एक खसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि नुमाइश के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात, फलसफे और उनकी अजीम कुर्बानी, नीज उनकी जिंदगी को दर्शाने वाली माला माल मुसविरी को नुमाइश पर रखा गया था। इस मौके पर महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजमोहन शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: देखिए ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की, जो 375वां मार्टिरडॉम था। पूरे देश में भारत सरकार के आदेशानुसार पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा, ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचर, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई है, इसमें लोग श्रद्धालु जहां आए हैं और देखे और उनको इसमें उनको इनसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
0: कुलगाम जिले में नेशनल टग ऑफ वार चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसमें मुल्क भर की 17 रियासतों से आई हुई टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डूरू गुलाम अहमद मीर ने किया। उन्होंने चैंपियनशिप का एहतमाम करने वालों को एथलीटों के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम करने पर शाबाशी दी। इफ्तिताही तकरीब पर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीटों, अहम शख्सियात और मकामी खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने कहा कि कौमी सतह का यह इवेंट मुनक्कद होने से मकामी नौजवान भी खेलकूद की तरफ रागिब होने लगे हैं। वादी में इन दिनों सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मारूफ झील डल और मुगल बागात के अलावा वादी के दूसरे सियाहती मकामात पर भी सयाहों का अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है, जो यहां के कुदरती नजारों से काफी लुत्फ महसूस कर रहे हैं।
2: मेरा नाम अर्शनूर कौर औचला है और मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। मेरे को अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी हम दूध पथरी विजिट किया है। मिक्स का मौसम है, कभी ज्यादा ठंडी हो जाती है और कभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है। लेकिन एक बात और, जो कश्मीर के जो लोग हैं ये सबसे बेस्ट है, इनकी जुबान माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे लोग है ना, ये मेरे को तो दिल को टच कर गए। मेरे को सभी ने इतना इतना प्यार दिया।
3: माय नेम दिलावर सिंह, आई एम फ्रॉम हरियाणा। कश्मीर द टॉप ऑफ द ब्यूटी, टू टू थ्री द ब्यूटीफुल, सो मच ग्रीनरी, लैंडस्केप्स, मीडोज, राइट, एंड वन ऑफ द लाइक वन ऑफ द बेस्ट सराउंडिंग।
0: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज में दाखिले की खातिर स्पॉट राउंड का ऐलान किया है। इस अमल के जरिए दाखिले के दूसरे राउंड की तकमील के बाद बाकी मांदा खाली नशस्तों को पूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने तालिबे इल्मों से तलकीन की है कि वो स्पॉट राउंड से भरपूर इस्तेफादा करें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम,
4: ड्रग स्मगलिंग, पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: और अब आखिर पर मौसम से मुतलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
5: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मां। जमहूरी निज़ाम में हुक्मरानी आवाम पर मरकूज होती है और यूं जमहूरी तर्ज निज़ाम में बुनियादी सतह के जमहूरी इदारों का अहम रोल होता है। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर पिछली कई दहाइयों के दौरान नामसाइद सियासी और सलामती हालात से दुचार रहा, ऐसे में यहां पंचायती और बलदियाती इदारों का रोल ज्यादा फाल नहीं रहा। 2019 में रियासी दर्जा खत्म किए जाने और इलाके को मरकजी निजाम वाला इलाका बनाए जाने के बाद 3 सतही पंचायती राज कायम करने की पहल की गई। श्रीनगर में कल पंचायती राज इदारों की मरकजी वजारत के अहतमाम से इन इदारों के कामकाज से मुतल्लिक एक वर्कशॉप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी में 2020 से 2023 के दरमियान हुई उस बड़ी पहल और उसके नुमाया असरात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन इदारों के इंतखाबात के बाद बुनियादी सतह पर तरक्याती अमल और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई। मनोज सिन्हा ने कहा कि जहां 2020 में आवाम को डिजिटल जराया से 35 खिदमात हासिल हो रही थी, वहीं इनकी तादाद 2023 तक 1100 हो गई थी और जम्मू कश्मीर ने पूरे मुल्क में अव्वल दर्जा हासिल किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस दौरान यूटी की 98% पंचायतों को डिजिटल निजाम से जोड़ने का संग मील भी तय हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पंचायती और बल्दियाती इदारों के चुनाव होने से जम्मू कश्मीर में इन इदारों के कामकाज में अवामी सहूलियत और दिलचस्पी बढ़ी थी, ताहम ये भी हकीकत है कि ये चुनाव सिक्योरिटी और सियासी हालात के एक खास तनाजुर में हुए थे और अक्सर मेन स्ट्रीम जमातों ने तब इन चुनावों का बायकॉट किया था। बदकिस्मती से इन इदारों की मुकर्रर मियाद खत्म होने पर ये चुनाव बरवकत करने की तरफ संजीदा तवज्जो नहीं दी गई और सरदस्त इन इदारों में कोई अवामी नुमाइंदगी नहीं है। अभी भी इस ताल्लुक से कोई वाजह टाइम टेबल सामने नहीं आया है कि यूटी में इन इदारों के चुनाव कब होंगे। ये बात मुसल्लम है कि अब की बार इन इदारों के चुनाव में सभी मेन स्ट्रीम जमातों की सरगर्म शिरकत मुतवक्को है और अवामी सतह पर भी ज्यादा इन्हिमाक से शिरकत का इम्कान है। इन इदारों के लिए यूटी होते हुए हर मुकर्रर मियाद के बाद बिना किसी वक्फे के चुनाव का इनेकाद सरदस्त मरकजी सरकार और एलजी की जिम्मेदारी है। ये सवाल अपनी जगह पर कायम है कि 2020 में जिस तरह डोल पीट कर इन इदारों के लिए चुनाव कराए गए, उनकी मियाद खत्म होने पर दोबारा चुनाव कराने में वो इन्हिमाक मफकूद क्यों रहा। कल के वर्कशॉप से इंडिया मिल रहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इन इदारों को फिर से फाल देखने की मुतमन्नी है। तवक्कु की जा सकती है कि अब जबकि पंचायती इदारों के लिए वोटर फहरिस्तों पर हाल ही में नजरसानी मुकम्मल हो गई है, हुकूमत बिला ताखीर इन इदारों के लिए चुनाव शेड्यूल का ऐलान करेगी। यूं पंचायती और बल्दियाती इदारों के लिए शफाफ और मुनसिफाना चुनाव से बुनियादी सतह पर जमहूरियत मजबूत होगी और तरक्याती अमल में अवामी शिरकत में इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इन इदारों के फाल और मुअसर किरदार को उजागर करके इस बात का इशारा दिया है कि इस मामले में अब मजीद ताखीर नहीं होगी। बाज मुबसरीन का ख्याल है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्तिताम पजीर होने पर सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इदारों का चुनाव होगा और श्रीनगर में कल मुनक्कदा वर्कशॉप इसी बात का एक इंदिया था। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
6: नशे आकाशवाणी लेने शुन चिकताइन छानी छुचुत के अच्छा दुख कसाता बल्टी डिग्रीम मेन तक सरबू सनाजात डिग्रीम फुलकन अब्दुल कयूम यांग डिग्रीम इकोटिक जात कन सोनामांचोक।

0: Dasang ijara is tanzan yandul tang sri yandul is alkane jabri lurik sanajats.
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मिस सीमा
6: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
6: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ngashe akashwani lene shwin chik tain sani chutot kya tans karma jip ju janga chadu kasat akashwani deli ne samachar sandhya gui ka news at 9 yang gudans karma chuen ka urdina nasul sanajat

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: This is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: that Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
7: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्यो जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
8: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: the need to bridge the distance between both through people-centric governance. It is also underlines that Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty, and fraternity.
1: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
1: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम. तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया. ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है. कोलकाता में एक जेरे तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं. इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं. अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई. आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कैनेडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा. अब खबरें तफसील से. तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई. उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की. भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत

0: Dasang isharain punso dorje tang chewang rikzene salkane lurik sanajaj.
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।